आज का पराविधिक मित्र सबिलाल जी और का महाराज यी जति यस सामुदायिक रेडियो में कार्यरत हुनुहुन्छ सबैलाई शुभकामना सबैको शरीरमा स्फूर्ति आओस् दुई लाइन भजन राख्ने इच्छा गर्दै आफ्नो सबैलाई पूर्ण विराम दिए नमस्कार प्रणाम।

बर्कीमार बत्कोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनहक जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बत्कोही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हो चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हो प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके पूर्व वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौव जुनी देठ सक्कु प्राणी हुक आपन आपन जीविका मनेक छ वसाक बैराट नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरुन सहायक लाग भक्कर गौरी ओर लै जाइटल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व में गैल कौरा हुक नक्सेना हुक सक्कु गैया हुक खेदर लै जाइ लग्ल बर्कीमार बटकोही।

0: कार्यक्रमको थप आकर्षण थारू सांस्कृतिक सखिया नाच, लठौवा नाच, मुंगडहुवा, ओक झुमरा नाच। कार्यक्रम होइना मिति 2083 साल असोज 28 गते से 30 गते सम्म। कार्यक्रम स्थल श्री महेन्द्र शिशु माध्यमिक विद्यालय जानकी गाउँपालिका 6 धर्मापुर। आयोजक जानकी गाउँपालिका कैलाली।
1: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
2: सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन।
3: अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनबाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।

बर्कीमार बतको ही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनाग जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बतको ही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हुकर चंद्र प्रसाद चौधरी जग्गू प्रसाद चौधरी जगबीर चौधरी और दर्जनों सहायक गायक हुकर प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके बुरु वर्षे सूरज भरार उदयथा अपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौवल झुनी देथा सक्कु प्राणी हुकर आपन आपन जीविका मने वर्षा का बैराट नगर का सक्कु लाला बाला गैया गुरुन चढ़ाई क्लाक भक्कर गौरी ओर ले जाई डला वह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व में गैल कोराहों का नक्शेना होकर सक्कु गैयाहों का खेदर का ले जाई लगला बर्कीमार बटकोही बाचकुंग्र सो

बर्किमार बतको ही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्किमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनाक जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बतको ही बर्किमार गैना कार्यक्रम बर्किमार का गायक होकर चंद्र प्रसाद चौधरी जग्गू प्रसाद चौधरी जगबीर चौधरी और दर्जनों सहायक गायक होकर प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके पूर्व वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी होकन लौव जुनी देख सक्कु प्राणी होकर आपन आपन जीविका मनेको छ वसाक बैराग नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरोन चढाइक्लाक भक्खर गौरी ओर लै जाइतल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व म गैल कौराहुक नक्सेना होकर सक्कु गैया होकर खेदर्क लै जाइ लग्ल बर्किमार बटकोही बाचक हुँ र

कार्यक्रमको थप आकर्षण थारू सांस्कृतिक सखिया नाच, लठौवा नाच, मुंग्रहुवा, ओकझुम्रा नाच। कार्यक्रम हुइना मिति 2083 साल असोज 28 गते से 30 गते सम्म। कार्यक्रम स्थल श्री महेन्द्र शिशु माध्यमिक विद्यालय जानकी गाउँपालिका 6 धर्मापुर। आयोजक जानकी गाउँपालिका कैलाली।

0: होन्डा सँगै यो दशैंमा आशाको शुरुआत गरौ। स्क्रैच कुपन मार्फत 1,00,000 सम्म जित्ने मौका। चुज एनी वन स्किम अन्तर्गत थप रु 10,000 सम्मको स्क्रैच कुपन, 7 वर्ष सम्म फ्री सर्भिसिङ अथवा 5 वर्ष सम्म AMC र होन्डा साथ अन्तर्गत विजेतालाई जितेको रकम प्रदान गर्दै सोही बराबरको रकम होन्डा नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्नेछ।
1: दमकल बिग्रेको सूचना। टिकापुर नगरपालिकाको दमकल बिग्रेर मर्मतको लागि धनगढ़ी लगिएको र मर्मत भएर नआउँदासम्म दमकलका सेवाहरू प्रदान गर्न टिकापुर नगरपालिका असक्षम रहेको सम्पूर्ण सेवाग्राहीमा जानकारी गराउँदछौ। टिकापुर नगरपालिका।
2: हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
3: हेलो बहिनी, कता हो? तिमीलाई थाहा छ कि नै, सीजी कम्पनीको वाइवाई जिंक 15 रुपियाँमा एक पेटी रु 560 उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ। तिमीले कतिमा किन्यौ?
4: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 किने।
3: 600 रुपियाँ किन हाल्नु पर्यो? 560 त ब्लक नम्बर 14 रहेको हरिलाल किराना पसलमा रु 15 चाउचाउ पाइन्छ, त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ, र त्यस्तै रु 25 क्लासिक चाउचाउ र 35 चाउचाउ रु 2500 रुपियाँमा आउँदैछ नि, त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ। फेरि 500-600 रुपियाँ वाइवाईमै किन हाल्ने? 460 मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ, त्यो पनि वाइवाई सीजी कम्पनीको, र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ। भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुहोस् है। होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ। आधिकारिक विक्रेता
4: हरिलाल किराना पसल, ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड, टिकापुर, कैलाली। सञ्चालक प्रदीप बहादुर विष्ट। सम्पर्क नम्बर 9848-40-22-41।
5: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
6: मै नै जाइ, उहाँ आफ्न अनुहार बिगर्थे, घर से बाहर नै निकर्छु।
5: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइको। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई टवई तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाई।
6: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तो मैं अब ही जाय।
7: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाड, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होइती रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046-77417।
8: हिन्दू भगवान के महान पर्व बर्का दशैं ओ शुभ दीपावली 2083 साल के पावन अवसर में सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग, नेपाली दादू भैया ओ दीदी बहिया हुकनमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती। सदगैया झोला उद्योग में तमान मेरके झोला सुपथ मूल्य में पा जाइट, जस्ते स्कूल बैग, कैरिंग बैग, लगेज बैग, फाइल बैग लगायत के तमान डिजाइन के बैग अर्डर करल अनुसार बना जाइट, ओ पुरान बिगड़ल झोला मरमत कर जाइट, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
4: रडगैया झोला उद्योग, मुनवा रोड, टीकापुर, कैलाली। संचालक राम प्रसाद।

0: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर। अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलटमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असोज 31 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर कैलाली।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान की 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी की राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हमारो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनते हलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर बजार में मासु पसल के अनुगमन कतिपय बिक्री स्थल में अत्याधिक प्रदूषित भेटागिल मासु पसल सफा धरना सुझाव। टीकापुर नगरपालिका के नगर अनुदान शिक्षक हुकरान के तलब बढ़ल तलब वृद्धि हुके शिक्षक हुकरा खुशी। सुरू पश्चिम प्रदेश में प्रतिपक्ष के बहिष्कार के बीच बजेट पारित हो आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 में नेपाल के लगातार दूसरो जीत। नवरात्र के चौथा दिन दशैं घर वा पूजा कोठा में नौ दुर्गा मध्य की चौथो कुष्मांडा देवी के विधिपूर्वक पूजा आराधना करतीबाट प्रत्येक वर्ष अश्विन शुक्ल चतुर्थी अर्थात दुर्गा पक्ष के चौथा दिन कुष्मांडा देवी के विधिपूर्वक पूजा आराधना करना शास्त्रीय विधि रहलबा आध्यात्मिक वस्तु के अधिभौतिक ओ समेत अधिदैविक ई तीन तपे समेत कुष्मा कहना चलन बा। न दुर्गा मध्य की चौथो देवी कुष्मांडा के समेत शरण में इलक भक्त हुकरण के तीनों तप समेत कर देना रलक ओर से नामकरण कर गिलक हो कुष्मांडा से सूर से समेत भर गिलक समेत घड़ाओ ओस्तक तथा रगत युक्त पात्र के धारण करना तमाम पुराण में उल्लेख कर गिलबा। दुर्गा सप्तती चंडी के समेत देवी कवाचमा समेत भरगिलक छ कुटसित समेत उष्मा कुष्मा ओसक त्रिविधातापुर ओसक संसार ओ समेत सअन्दे मंस पेशे ओसक अर्थात विधि टप युक्त संसार चेकर समेत पेट मबा ओह भगवती समेत कुष्मांड के रूप में चिंजेना चलन बा। नवरात्र के पहल दिन असोज 25 गते अटवार के दशैं वा समेत दशैं घर वा पूजा कोठा में वैदिक विधिपूर्वक घट स्थापना समेत करके समेत जौरा समेत धरना चलन रहल बा। अशोक ई दिन से घट स्थापना करगिलक स्थान से नई नौ दुर्गा मध्य की पहल देवी शैलपुत्री आह्वान करके विधिपूर्वक पूजा आराधना करना चलन बा। दूसरे दिन सोमवार के पूजा स्थल में समेत दूसरा चंद्र ब्राह्मण चारिणी की देवी है आह्वान करना और विधिपूर्वक पूजा आराधना करना बा कलश। तेसरे दिन मंगलवार के दिन चंद्रघंटा देवी की समेत निष्ठा के साथ पूजा आराधना करना चलन बा। बड़ा दशैं के चौथा दिन आज कुष्मांडा देवी की विधिपूर्वक पूजा आराधना करना चलन रहल बा। टीकापुर बजार में मासु व्यापारी हुकरा व्यापार सुधार नै फिलक पागिल बा। टीकापुर नगरपालिका के मंगलवार अनुगमन के क्रम में ऐसी अवस्था फैला पड़ल के हो। टीकापुर नगरपालिका एक ब्लॉक नंबर 14 स्थित रावल फ्रेश हाउस के बिक्री स्थल व्यवस्थित बनाके फिर समेत खसी नाली ऊपर समेत धर के भुटलाव खर्ती रलक पागिल बा। ब्लॉक नंबर 14 में रहल सीताराम फ्रेश हाउस में प्लास्टिक बार के मुर्गी भुटला उखरना करती रलक ओ भाड़ा में फोहर रलक ओ मासु बिक्री में केलक समेत कोनो मापदंड पूरा नहीं करलक पागिल बा। खखरौला रोड प्रशासन जैना दगरह लगह रलक छोटेलाल माछा मासु पसल में फे समेत सरसफाई नहीं रलक मासु पसल में सुर्ती चुरोट लगायत के समेत सामान बिक्री करती रलक। विक्रेता हुकरा अपना निर्सर रलक ओर से मासु व्यापार व्यवसाय संबंधी कौन जानकारी नहीं रलक बटोले बाट। ब्लॉक नंबर 13 स्थित के मासु पसल भित्रे दूरी के समेत खटिया बिछाइल किराना पसल समेत धरलक पागिल बा। यहां के पसल में बाहरी वातावरण फे समेत फोहर फैला पड़ल बटागिल बा। मासु के शुद्धता के लाख स्वस्थ पशु पक्षी सफा बदशाला पशु भंडारण के समेत मापदंड र लसफेन टिगापुरमा मासु व्यवसाय हुक्रनके लापरवाही गर्लक पागिलबा दूर दूर से गाउँ मनसे काटके लानगिल खसी अस्तक बंगुर के मासु बोरामा समेत बेरके मोटरसाइकलमा टिकापुर बजार लानके बेस्ती रलक पागिलबा इसके दूर से समेत मासु लनलक और से बिग्रना फोहर मिलना सक उपभोक्ता हुक्रन के उह समेत बेचना करलक पागिलबा सक मुर्गा धुआनी फे समेत नई मिल गिलक पागिलबा कोनो फे पशु पंक्षी है मासु के लग बट करना आगे विश्राम कर पन्न रलक और से कुखरा हुक्रन के समेत उल्टा टंगा के लन्ना मोटरसाइकिल में झुरा के समेत ठुठुन समेत भुइयामा घिसर्ती धुवानी करलक पागिलबा बट करनक लग धरगिल मुर्गी सड़कमा धरगिलक पागिलक ओर से व्यवस्थित करना निर्देशन दैगिल उपभोक्ता लक्ष्मी प्रसाद चपाई जथाभावी मासु कटना हो मासुजन्य पदार्थ फेक्न करलक ओर से वातावरण प्रदूषण हुईते रलक बटोले बाटे टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के सचिव प्रकाश शाह कुछ मासु पसल के लापरवाही करलक हो समेत खैनी नै मिलना खालके समेत मासु बिक्री हुई तिरलक व्यवसाय संचालन मा समेत मापदण्ड पूरा समेत करके व्यवसाय संचालन करना और लापरवाही नै करना सुझाव देले बाटै पशु चिकित्सक नरबहादुर कार्की कुछ व्यवसाय हुकर बिक्री स्थल सुधार गति र लसफेन मापदण्ड अनुसार समेत अभिन फेर ढेर करना बाँकी रलक सुझाव देले बाटै टीकापुर नगरपालिका के बाल विकास शिक्षा को नगर अनुदान शिक्षक हुकरण के तलब वृद्धि करल बा नगरपालिका नगर कार्यपालिका के कार्य बैठक इकहत्तरों बैठक से संघ सरकार के निर्णय अनुसार नई बाल विकास शिक्षा संबंधी के तलब 24,000 उपलब्ध कराइना निर्णय करल बा एक साथ ही नगर अनुदान शिक्षक हुकरण के तलब समेत वृद्धि करना निर्णय करगिल बा नगर अनुदान शिक्षक हुकरण के आधारभूत तह कक्षा एक से लेके पांच तम या आगे नई 18,000 समेत में पैटी एलक में 28,000 अस्तक कक्षा छ से लेके 8 सम के शिक्षक हुकरण के 20,000 पैटी एलक में 30,000 तलब पुगल हो वार्ड नंबर 8 के वार्डाध्यक्ष दीर्घबार थकुला बटेले बाटे शिक्षक हुकरण के तलब वृद्धि हुई पास शिक्षक हुकरा खुशी हुई लो नगर अनुदान शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष सूर्यदेवी भट्टराय लम्बा समय पाछे अपना हुकरण के मांग स्थानीय सरकार से पूरा कर लगमा धन्यवाद देले बाटे कार्यपालिका के बैठक से शिक्षक हुकरण के तलब वृद्धि संगे 18 ठो निर्णय करल बा कार्यपालिका के नगर दर रेट में स्वीकृति कर गिलक हो बैठक से कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि हुकरण मासिक रूप में देजिना पेट्रोल खर्च अब मासिक तलब संगे खाता में पठिना निर्णय करल बा साथ ही रसुआ के बाढ़ पीड़ित हुकरण के लाख प्रधानमंत्री राहत कोष में 5,00,000 रकम जमा करना निर्णय करल ठकुला बटोले बाटे खोजखर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: लो इतनी छिटो आमा बनने लागो तो
2: मैंने भागने जा बंदी अब तो आप आओ नहीं चु तो अब समा बनी हमें सकी न सकी सभी काम करने पर जा कंटो कारों जा अपनी काम करने विदेश जानु आजा के करने के न करने के ही था जेना तो जन्म पड़े जैसे लाजा
1: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्योलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
4: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर
0: विश्राम पाछ फिर से स्वागत बा सुदूर पश्चिम प्रदेश में बजेट शून्यता के अवस्था हटल बा प्रदेश सभा से कालिक बैठक से प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के कि बहिष्कार के बीच फिर समेत आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट बहुमत से पारित हुई संगे करीब तीन महीना से लेके बजट के शून्यता के अवस्था हटल के हो। अटवार के आर्थिक मामला मंत्री चक्र बहादुर मल्ल से प्रदेश सभा में 37 अरब 70 करोड़ बराबर के बजट प्रस्तुत कर गेल बा। वह दिन बजट प्रदेश सभा में टेबल करगिलक रह बजट ऊपर छलफल हुई आगे नई विवाद चर्कल पाछे यमुना प्रदेश सभा बैठक प्रभावित हुई आयल रह। बजेट विवाद समाधान करना सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बजेट संशोधन तथा विवादित विषय के छानबीन करना और कार्तिक 15 गते भीतर पूरक बजेट समेत लन्न सहमत हुई पाछे प्रक्रिया आगे बढ़ल के हो। आगे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह नेतृत्व के सरकार से गैल असार 1 गते बजेट प्रस्तुत करल से फिर सत्ता गठबंधन बदलल पाछे बजेट पारित हुई निशेकल रह। 37वां अंतर्राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर में टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 7 बैदी में कार्यक्रम करगिल बा। विपद व्यवस्थापन समिति बैदी के आयोजन में फिलक कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा गुलमा खकरौला के डीएसपी नंदकिशोर महतो प्रमुख अतिथि रहल रहे। प्रैक्टिकल एक्शन नेपाल बी ग्रुप के सहयोग में हुई कार्यक्रम में नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नारायणपुर के सभापति धनसरी कोइराला बी ग्रुप के कार्यक्रम संयोजक हेमंतराज जोशी टीकापुर नगरपालिका सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण शाखा के प्रमुख चेत बहादुर बोहरा आदर्श टोल विकास संस्था के अध्यक्ष गोविंद कोइराला ओजुआताल के समेत टोल विकास संस्था के अध्यक्ष बलबहादुर गरंजा अस्तक सामुदायिक विपद व्यवस्थापन के नगर समिति संयोजक बलबहादुर चौधरी कर्णाली मावी शक्ति के शिक्षक राजकुमार चौधरी लगायत से बोल रहे। कार्यक्रम में समुदाय स्तरीय तमाम समिति के प्रतिनिधि हुकरा वासुदेव कोइराला राजकुमार चौधरी समझना चौधरी गोमा धामी चन्द्रबहादुर रोक्का सुन्दर चौधरी लगायत से असल अभ्यास और सिकाई के बारे में जानकारी कराइल रहे। सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद रेग्मी के अध्यक्षता में विलक कार्यक्रम संचालन सामुदायिक प्रकोप व्यवस्थापन समिति के राष्ट्रीय संजाल के सुरपश्चिम अध्यक्ष तथा स्थानीय सामुदायिक व्यवस्थापन समिति के सचिव भोजराज दुंगाना करल रहे। कार्यक्रम में आगलागी से बचना उपाय के बारे में अभ्यास समेत करा गेल रह। सरकार से 2000 से ढेर विद्यार्थी भर्ती रलक 109 सामुदायिक विद्यालय के भौतिक पूर्वाधार सुधार के लग चालू आर्थिक वर्ष में 6 अरब 54 करोड़ रूपया खर्च करना बतागिल बा। ई विद्यालय में आधुनिक भवन निर्माण तथा पूर्वाधार विस्तार के लग बजेट छुट्यागिले खो। पहल चरण में 89 विद्यालय के लग 5 अरब 34 करोड़ रूपया निकासा हुई। शिक्षा तथा खेलकूद समिति के समेत खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल के सचिवालय से जनाइल बा निकासा हुईलक रकम। विद्यालय के 12 कोठी 3 तले भवन निर्माण करना मंत्रालय से जनाइल बा समेत प्रति विद्यालय में करीब 6 करोड़ रूपया के लागत अनुदान में करगिलक भवन में कक्षा कोठा प्रयोगशाला औस्तक समेत पुस्तकालय के व्यवस्था करना कहलबा। मंत्री पोखरेल से विद्यालय के चाप रलक सामुदायिक विद्यालय में पूर्वाधार सुधार में प्राथमिकता देना बतागिल बा। वहां के अनुसार कुछ सामुदायिक विद्यालय में विद्यार्थी के संख्या बढ़ती रहल बा कल से कुछ विद्यालय में विद्यार्थी अभाव के समेत समस्या में रहल बतल बा। नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद सन 2027 से लेकर 29 के कार्यकाल के लाख सदस्य में निर्वाचित हुई बा। न्यूयॉर्क स्थित राष्ट्र संघ के मुख्यालय में हुईलक निर्वाचन में नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में गिलक 180 मत मध्य 173 मत प्राप्त करते सदस्य में चुनगिल बा। एशिया प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय समूह मन से निर्वाचित देश हुकरन मध्य नेपाल सबसे ढेर मत पायल बतागिल बा। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के नेपाल के थाई न्यूयॉर्क से निर्वाचन पाछे मंतव्य जारी करती नेपाल है विश्व समर्थन मां समेत प्रदान करना संयुक्त राष्ट्र संघ के सकु सदस्य राष्ट्र हुकन प्रति आभार व्यक्त करल बा। खोज खर माए गरी फैन से विश्राम पास फिर से भी सुनते रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
6: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
7: मैं नहीं जाऊं
6: उहाँ आफ्न अनुहार बिगर्थे घर से बाहर नै निकर्थ्यो।
7: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू तब तुम अब भी जाए।
8: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
9: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
10: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै।

0: गरौ भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: विश्राम पाछ फेरसे स्वागत बा। गृहमन्त्री सुजन गुरूङ ओ भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता होइल बा। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग के लाग समेत बंगला के खाड़ी के समेत प्रयास बिमस्टेक मा समेत गृहमन्त्री स्तरीय प्रथम बैठक में सहभागी हुना भारत के नयाँ दिल्ली पुग्लक गृहमन्त्री गुरूङ ओ भारतीय समकक्षी बीच भेटवार्ता हुईलक बता गेल बा। भेटवार्तामा उहाँ बीच दुई देश के साझा सुरक्षा चासो के विषय में समन्वय और सहकार्य में सुदृढ़ करना के बारे में विचार विमर्श हुईलक गृह मंत्रालय से जनायल बा। भेट में गृहमंत्री गुरूङ से नेपाली उद्यमी तथा व्यवसाय हुंकला से भारतीय बजार में पहुंच के संबंध में समेत भोक्ति ऐलक प्राविधिक समस्या समेत विशेष करके बीआईएस प्रमाणीकरण लगायत केमा समस्या समाधानमा चासो धरल रहाई नेपाल के समेत चासो पर भारतीय समकक्षी मनसे सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होइल मन्त्रालय से जनाइल बा। गृहमन्त्री गुरूङ बिमस्टेक गृहमन्त्री स्तरीय प्रथम बैठकमा सहभागी हुन सोमबार नयाँ दिल्ली स्थित प्रस्थान गरल रहाई। गृहमन्त्री गुरूङ यह असोज 28 गते स्वदेश लौटना कार्यक्रम रहल बा। ओआईसी विश्वकप क्रिकेट लीग दुई अन्तर्गत के त्रिदेशीय समेत एक दिवसीय श्रृंखलामा नेपाल लगातार दोस्रो जीत हासिल करल बा। अब अमीरात क्रिकेट मैदानमा समेत कालीखुल खेलमा नेपाल से घरेलू टोली ओमान हे 113 रन से पराजित करलक हो। नेपाल से देहल 264 रन के लक्ष्य पसगुराइबेर ओमान 40 ओभरमा 150 रनमा सीमित हुइल रह। सकल लीग दुई के शीर्ष चरणमा पुग्न सम्भावना गुमासेकला नेपाल एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगेनभर शीर्ष 6 मा भित्र रह पर्न बा। यही समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुर बाजार में मासु पसल के अनुगमन, कैयों बिक्री स्थल में अत्याधिक दूषित भेटागिल मासु सफा करना सुझाव। टीकापुर नगर पालिका के नगर अनुदान शिक्षक खुंकरण के तलब बढ़ल, तलब बढ़ल कोर्से शिक्षक खुंकरा खुशी। पश्चिम प्रदेश में प्रतिपक्ष के बहिष्कार के बीच बजेट पारित हो। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप क्रिकेट लीग दुई में नेपाल के लगातार दोस्रो जीत। लिट बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनचर विराम।

बर्कीमार बत्कोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनाग जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बत्कोही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हुक्र चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हुक्र प्रकृति का रचना कत्रा सजीव बा बिहान उठिके पूर्व वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौ जुनी देठ सक्कु प्राणी हुक आपन आपन जीविका मनेको छ वसाक बैराट नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरोन चढाइक्लाक भक्खर गौरी ओर्लै जाइटल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व म गैल कौराहुक नक्सेना हुक सक्कु गैया हुक खेदर्क लैजाइ लग्ल बर्कीमार बटकोही बाचक हुँ र सो

कार्यक्रमको थप आकर्षण थारू सांस्कृतिक सखिया नाच, लठौवा नाच, मुंगडौवा, ओकझुम्रा नाच। कार्यक्रम होइन मिति 2083 साल असोज 28 गते से 30 गते सम्म। कार्यक्रम स्थल श्री महेन्द्र शिशु माध्यमिक विद्यालय जानकी गाउँपालिका 6 धर्मापुर। आयोजक जानकी गाउँपालिका कैलाली।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए।
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

बर्कीमार बत्कोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनाक जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बत्कोही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हों चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हुँ प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान उठिके बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौव जुनी देछ सक्कु प्राणी हुक आपन आपन जीविकामा निकट वसाका बैराग नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरोन चहाइक्लाक भक्खर गौरी ओरले जाइटल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्वमा गई कौराहुक नक्सेना हुक सक्कु गैया हुक खेदर्क लैजाइ लग्ल बर्कीमार बटकोही बाचक हुँ।

0: Fragrance。
1: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइस, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो, यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन, बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही, तोर समस्या फेन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477417।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उक संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
2: ए सन्तेकी आमा पर कान्छा खालाको ब्याको न्यू त आएको छ कसो हो त जाने विचार छ कि नै त
3: आफ्ना कान्छा भाइको बे नगरिकन पनि भएन जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र पन भाँची गयो
2: यतिका लागि त सामुएल जोलस बनेको है बरु अहिलै जाउँ एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ
3: आज त सन्तेका बाले मनकै पुरो हर्यो हट त बाई जाउँ।
4: सामुएल ज्वेलर्स सुनचारीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचारी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार सम्पर्क नम्बर 98-68-44-1208 98-486-39-261।

0: व्हील घाव खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
1: संपर्क मनीष मेडिकल हॉल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477417।

बर्कीमार बत्कोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार क व्याख्या सहित का गायन मनैना जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बत्कोही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हो क्र चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हो क्र प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौवल झुनी देठ सक्कु प्राणी हुक आपन आपन जीविकामा देखठ वसाक बैराट नगर का सक्कु लाला बाला गैया गुरुन चढाइक लाग भक्खर गौरी ओर्लै जाइतल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्वमा गैल कोराहुक नक्सेना हुक सक्कु गैया हुक खेदर्क लैजाइ लग्ल बर्कीमार बटकोही बाचक हुँ र सो

बर्कीमार बत्कोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनहर जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बत्कोही।

बर्किमारक गायकहुक चन्द्र प्रसाद चौधरी, जग्गु प्रसाद चौधरी, जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हुक। प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके पूर्व वर्षे सूरज भरार हुँदै छ। आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौव झुनी देठ। सक्कु प्राणी हुक आपन आपन जीविका मा देखठ। वसाक बैराग नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरोन चढाइक लाग भक्खर गौरी ओर लै जाइटल। ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व मा गैल कौरा हुक नक्सेना हुक सक्कु गैया हुक खेदर का लै जाइ लग्ल। बर्किमार बटकोही बाचक हुँक्र

0: गरौ भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: बाबु ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो
3: मैनै जें वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलतु।
2: उहे मारे तो तू हिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाए।
4: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोसरो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: का पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कब्बू झोले फटाका आज इठा का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर इटी रहा था
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटाका कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं सीखो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कतरा सुगर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला जस का टस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकटुनी
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गया झोला उद्योग में रट गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़

0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन त भाउ के पाउँछ त्यहाँ?
1: ए त्यहाँ त्यहाँ छ नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
2: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
3: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
4: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतोल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स।
2: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स।
5: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
4: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 98484463 र 98164602204।
6: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
7: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़के घर से बाहर नै निकर छु।
6: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
7: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर। फोन नंबर 98600071024 ओ 98046777417।
8: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
9: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
10: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
8: डेलिभरीका लागि
10: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
8: टिकापुर कैलाली।
11: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98017106772।
12: स्वास्थ्यका लागि पानी।
13: Coffee ready.
14: Wow, thank you. You sound like a chisavendit panautu. Mangaldeep scent 3-in-1 ka saath.
13: I love the scent.
14: I love it too. Hamile man parcha bhane, bhagwan lai pani man parcha.
13: Mangaldeep scent 3-in-1. Perfume like fragrance.

ऋषिकवेद पारायण महायज्ञ तथा वेदोपनिषद सप्ताह 2083 को हार्दिक निमन्त्रणा। आदरणीय सज्जन वृन्द, वैदिक धर्म संस्कृति वेदाध्ययन तथा आध्यात्मिक चिन्तन प्रति श्रद्धा राख्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ऋषिकवेद पारायण महायज्ञ

बर्कीमार बत्कोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार का व्याख्या सहित का गायन मनैना जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बत्कोही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हों चंद्र प्रसाद चौधरी जग्गू प्रसाद चौधरी जगबीर चौधरी और दर्जनों सहायक गायक हों प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौ जुनी देठ सक्कु प्राणी हुकर आपन आपन जीविकामा निकट वर्षा का बैराग नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरुन चढ़ाई क्लाक भक्खर गौरी ओर ले जाई डल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व में गैल कोरा हुक नक्शना हुकर सक्कु गैया हुकर खेदर का ले जाई लगला बर्कीमार बटकोही बाचक हुँ र

कार्यक्रमको थप आकर्षण थारू सांस्कृतिक सखिया नाच, लठौवा नाच, मुंगडौवा, ओकझुम्रा नाच। कार्यक्रम होइन मिति 2083 साल असोज 28 गते से 30 गते सम्म। कार्यक्रम स्थल श्री महेन्द्र शिशु माध्यमिक विद्यालय जानकी गाउँपालिका 6 धर्मापुर। आयोजक जानकी गाउँपालिका कैलाली।

0: मर्छु कि भनी भेटै नभई मर्छु कि भनी।
1: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जै भो? पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जा सेक्ल।
2: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
1: मिस्तरान बर्जनाऊ का ना घर हेरो ना, पटा सुगुर बनेल बाट। अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानियों काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
4: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो, जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रेक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
4: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरा पारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
4: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
6: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्रेक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 0915604070 र मोबाइल नम्बर 9848578।

बर्कीमार बतको ही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार क व्याख्या सहित का गायन मनैना जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बतको ही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हूं क्र चंद्र प्रसाद चौधरी जग्गू प्रसाद चौधरी जगबीर चौधरी व दर्जनौ सहायक गायक हुक्ल प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके बुरू वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौव जुनी देठ सक्कु प्राणी हुक्ल आपन आपन जीविकामा देखठ वसाक बैराग नगर का सक्कु लाला बाला गैया गुरुन चढ़ाई क्लाक भक्खर गौरी ओर ले जाइ दला ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व में गैल कोराह का नक्शना होकर सक्कु गैया होकर खेदर का ले जाइ लगला बर्कीमार बटकोही

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अदि गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशानाटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864 41208 और 9846 39261।
2: कामदार आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
3: काठमाडौँ स्थित घरेलु कामदार का लागि एकजना पुरुष र एकजना महिला तथा सिन्धुपाल्चोक का लागि एकजना कामदार तत्काल आवश्यक परेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
2: कार्यस्थल काठमाडौँ तथा सिन्धुपाल्चोक आवश्यक संख्या पुरुष एकजना महिला एकजना तथा अन्य एकजना सम्पर्क फोन नम्बर 9851400725 इच्छुक व्यक्तिहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला।

कोई का अपना बीते होलन कोई का पर भए आउने जाने चली रन्छ भन्दै मन बुझाए कोई छन आर्मी पुलिस मा ड्यूटी गर्दै होलन हकीमको।

बर्किमार बतको ही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्किमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनहर जिनकी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बतको ही बर्किमार गैना कार्यक्रम बर्किमार का गायक हों चंद्र प्रसाद चौधरी जग्गू प्रसाद चौधरी जगबीर चौधरी और दर्जनों सहायक गायक हों प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी होकन लौवल सुनी देठ सक्कु प्राणी होकर आपन आपन जीविका मनेको छ वसाका बैराग नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरोन चढाइक्लाक भक्खर गौरी ओर लैजाइ दल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्वमा गैल कौराहुक नक्सेना होकर सक्कु गैया होकर खेदर्क लैजाइ लग्ल बर्किमार बटकोही

बर्किमार बटकोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्किमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनहर जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बटकोही बर्किमार गैना कार्यक्रम बर्किमार का गायक हो चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हो प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके पूर्व वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी होकन लौ झुनी देठ सक्कु प्राणी होकर आपन आपन जीविका मनेकठ वर्षा का बैराट नगर का सक्कु लाला बाला गैया गुरुन चढ़ाई क्लाक भक्खर गौरी ओर ले जाइ डला ओह बैला मा सुशर्मा का नेतृत्व में गैल कोरा होकर नक्शना होकर सक्कु गैया होकर खेदर का ले जाइ लगला बर्किमार बटकोही पाच

0: Fragrance。
1: चाडपर्वको रमाइलो आफन्तको भेटघाट अनि स्वादिष्ट परिकारको मिठो स्वादमा दशैंको खुशी होस् या दीपावलीको उमंग परिवार र साथीभाइसँग रमाइलो गर्दै बिरियानी हाउसमा स्वादको मजा लिनुहोस्। बिरियानी हाउसमा स्पेशल हैदराबादी दम बिरियानी, इडली, डोसा, फ्राई राइस, मोमो, कम्बो बिरियानी, कम्बो सेट, उत्पा, उदिन ओरा पाउनुका साथै दशैं र दीपावलीको विशेष अवसरमा चिकन रु 200 मटन 300 मा पाइन्छ। साथै विजया दशमी तथा शुभ दीपावलीको अवसरमा बिरियानी हाउस परिवारको तर्फबाट सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, इष्टमित्र, शुभचिन्तक, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
2: बिरियानी हाउस टिकापुर एक पुरानो बलभद्र चोक बुच्चर भएको लाइन, सञ्चालक सूर्य प्रकाश आचार्य, फोन नम्बर 97 47 82 73।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
3: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हैं, ये पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन, बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही, तोर समस्या फैन अस्ते बा, जाइबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
6: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846 77 417।
7: समयमै आफ्नो घर, परिवारको जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौ। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
8: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

बर्किमार बतको ही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्किमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनाग जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बतको ही बर्किमार गैना कार्यक्रम बर्किमार का गायक होकर चंद्र प्रसाद चौधरी जग्गू प्रसाद चौधरी जगबीर चौधरी और दर्जनों सहायक गायक होकर प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी होकन लौ झुनी देठ सक्कु प्राणी होकर आपन आपन जीविका मानेको छ वसाका बैराग नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरोन चढाई क्लाक भक्खर गौरी ओर ले जाइ दल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व में गैल कौराहों का नक्सिना होकर सक्कु गैया होकर खेदर का ले जाइ लगला बर्किमार बटको ही बाचक हुँ र

0: कर्मचारी आवश्यकता महापार्वती मेडिकल तथा जोशीपुर पोलिक्लिनिक जोशीपुरमा अनुभवी कर्मचारीहरूको आवश्यकता परेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिन्छ। आवश्यक पदहरू ल्याब टेक्निसियन अथवा ल्याब असिस्टेन्ट माग पद संख्या 1 फार्मेसी सहायक माग पद संख्या 1 एचए अथवा अहेब माग पद संख्या 1 सम्पर्क 9848637585 9815680464 महापार्वती मेडिकल तथा जोशीपुर पोलिक्लिनिक जोशीपुर कैलाली।
1: बडा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। हाम्रो यहाँ चिकन राइस, अण्डा राइस, भेज राइस, चिकन मोमो, भेज मोमो, चाउमिन, कोदोको मोमो, छोला समोसा, बोइल अण्डा आदि पाइन्छ। सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
0: बाजेको खाजा घर टिकापुर 1 पुरानो ट्रिनिटी स्कूल भएको घरमा सञ्चालक चक्र प्रसाद उपाध्याय सम्पर्क नम्बर 9842531373।
2: शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टिकापुरको सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी सूचना। शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूलाई यही असोज 10 गतेदेखि 25 गतेसम्म आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरिसक्नु पर्ने भएकाले सामुदायिक वनका सम्पूर्ण सदस्यहरूले असोज 25 गते भित्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। अध्यक्ष कर्ण बहादुर बुढा, शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टिकापुर 2 राजीपुर कैलाली।
3: दाई बेड भोक लाग्ता खाजा बाँकी नै। ए काकी फे आइल बाटे, राम राम काकी।
4: राम राम हो नानी, मजा बाटो ऐसन ले छाइट भारी हो स्याकल बाजे। आप हली भुआस कर दिए परल है, समय में भुआस कर दे से आपन जिम्मेवारी फे वरी ना और जनक बात फे सुननी पड़ना।
5: आ दिदी फे ऊ बेला आपन कटरा पहना इच्छा रह छुट्टी में भुआस कर दे मुआ दाई बाबा करल गलती जस्त फिर फिर डोरिया नी चहठू दीदी मई चाह ई बाल विवाह करनी चहठू ई बाल विवाह निकरण दीदी।
6: शारीरिक को मानसिक रूप में सक्षम नै होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कई देना से दाई वो बच्चा दुनू के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकत। ऊ हिंसा के शिकार बन सकत। उही विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई सकथिस। ऊ रोजगार फिर नहीं पाए, ओ गरीबी में बांच बाध्य हुई पड़थिन। नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई असिन करैल से 3 वर्ष सम कैद ओ 30,000 रूपया सम जरिवाना हुई सकत। ओ असिन भुआस कानूनी मान्यता
7: टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 से देगिलक जनहितमा जारी सन्देश।
8: हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं

बर्कीमार बत्कोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार क व्याख्या सहित का गायन मनैन जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बत्कोही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हो क्र चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हो प्रकृतिका रचना कत्रा सजीव बा बिहान टिके बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदैछ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौ झुनी देठ सक्कु प्राणी हुक आपन आपन जीविकामा देखठ वसाका बैराग नगरका सक्कु लाला बाला गैया गोरुन चढाइक लाग भक्खर गौरी ओर्लै जाइटल ओह ब्यालामा सुशर्माका नेतृत्वमा गैल कोराहुक नक्सेना हुक सक्कु गैया हुक खेदर्क लैजाइ लग्ल बर्कीमार बटकोही बाचक हुँ र

ऋषिवेद पारायण महायज्ञ तथा वेदोपनिषद सप्ताह 2083 को हार्दिक निमन्त्रणा। आदरणीय सज्जन वृन्द, वैदिक धर्म संस्कृति वेदाध्ययन तथा आध्यात्मिक चिन्तन प्रति श्रद्धा राख्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ऋषिवेद पारायण महायज्ञको पावन अवसरमा गरिमामय उपस्थिति तथा सक्रिय सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। ऋषिवेद पारायण महायज्ञ तथा वेदोपनिषद सप्ताह 2083 कार्तिक 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म। आयोजक श्री मल्लिका विद्यापीठ, गुरूकुल टिकापुर, कैलाली।

0: कल्चर मंगलदीप सेठ 3-in-1 के साथ।
1: आई
0: लव इट टू। हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
1: मंगलदीप सेन्ट 3-in-1 परफ्युम लाइक फ्रेग्रेन्स।

बर्कीमार बतको ही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनाक जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बतको ही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हुक्र चंद्र प्रसाद चौधरी जग्गू प्रसाद चौधरी जगबीर चौधरी और दर्जनों सहायक गायक हुक्र प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौव जुनी देथ सक्कु प्राणी हुक्र आपन आपन जीविका मा निकट वसाका बैरात नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरोन चढाइक्लाक भक्खर गौरी ओर्लै जाइतल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व मा गैल कोरा हुक नक्सेना हुक्र सक्कु गैया हुक्र खेदर क लैजाइ लग्ल बर्कीमार बटकोही बाचक हुक्र सो

कार्यक्रमको थप आकर्षण थारू सांस्कृतिक सखिया नाच, लठौवा नाच, मुंगडौवा, ओक छुम्रा नाच। कार्यक्रम होइना मिति 2083 साल असोज 28 गते से 30 गते सम्म। कार्यक्रम स्थल श्री महेन्द्र शिशु माध्यमिक विद्यालय जानकी गाउँपालिका 6 धर्मापुर। आयोजक जानकी गाउँपालिका कैलाली।